बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

दस बज के 9 मिनट है। स्टूडियो की घड़ी का समय 107 एफएम रेनबो पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, कार्यक्रम है नॉन स्टॉप गपशप, जिसमें नॉन स्टॉप गपशप के साथ साथ एक से बढ़कर एक गीतों का सिलसिला भी चलता रहता है इसी कार्यक्रम में। और इसीलिए तो नाम दिया गया है नॉन स्टॉप गपशप, जिसमें अलग अलग विषयों को लेकर नॉन स्टॉप बातें होती रहती हैं, है ना। तो फिलहाल आपके साथ आपकी रेडी दोस्त शर्मिशा हाजिर हो चुकी है। समय हो चला है 10:10 और 10:02 से शुरू हो जाता है इस कार्यक्रम का साथ, जिसमें साथ होता है आप सभी श्रोताओं का और अलग अलग विषयों के साथ गीत संगीत का साथ तो रहता ही है इसी कार्यक्रम में। तो 107 एफएम रेनबो चैनल तो आपने ट्यून कर ही लिया है। इसके अलावा बता दूं कि हमारा जो ऑफिशियल ऐप है AIR, जी हाँ, ये जो ऐप है ये है हमारा ऑफिशियल ऐप, और इस पर भी हमारा जो प्रसारण है आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। वैसे तो बातें होंगी बहुत सी आज के इसी कार्यक्रम में, और आशा करूंगी कार्यक्रम की शुरुआत में यही कहना चाहूंगी कि मेरे सभी श्रोता बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। और अब आगे जो मैं कहने वाली हूँ कि मौसम का मिजाज आप भरपूर तरीके से ले रहे होंगे, अगर ये बात मैंने आपको कही तो दूसरी तरफ से आप ये कहेंगे कि भाई वैसे भी मौसम का जो प्रकोप है, जी हाँ, गर्मी का जो प्रकोप है, इससे हम नहीं बच पा रहे हैं। और भला मैं ये कैसे कह रही हूँ कि मौसम का मिजाज का जो आनंद है उसे आप लेते रहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मौसम का मिजाज जो है वो बिल्कुल गड़बड़ा रहा है, क्योंकि हीट वेव की लहरें हम सभी को परेशान कर रही है। वैसे तो भाई कुदरत का खेल है ये, कब कुदरत क्या खेल खेले ये तो हम सभी में से किसी को नहीं पता होता है। वैसे कुदरत अपना खेल खेल रही है, लेकिन हमें भी बिल्कुल हारना नहीं है इस खेल में। कुदरत चाहे कितने भी खेल ले, रंग दिखा ले, लेकिन इसके बावजूद हमें बिल्कुल हारना नहीं है। जी हाँ, गर्मी चाहे जितनी भी बढ़ती रहे, लेकिन हमें सावधान रहना है कि किस तरीके से गर्मी से बचा जा सकता है, और गर्मी से बचने के लिए जो जो भी उपाय करने ज़रूरी हैं सब कुछ करके हम भी दिखा देंगे कि इस खेल में हम भी बहुत ज़्यादा माहिर हैं, और किसी भी तरीके से ना हम हारेंगे ना हमारे करीबी लोगों को हम हारने देंगे। तो चलिए, हार जीत की बात तो होती रहेगी, वैसे और भी बहुत सी बातें करनी है आपके साथ इसी कार्यक्रम में। तो चलिए फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए, और उसके बाद तो बातें शातें तो होती ही रहेंगी, है ना। फिलहाल लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: अच्छी बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: दस बजकर 23 मिनट है। स्टूडियो की घड़ी का समय 107 एफएम रेनबो पर। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा। और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और गपशप इस वक्त किस विषय को लेकर कर लेते हैं। चलिए भाई, मई का महीना शुरू होकर, जी हाँ, मध्य में हम पहुंच चुके हैं, यानी कि मिडिल मे में हम चल रहे हैं। और ऐसे में स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, समर वेकेशंस शुरू हो चुके हैं कई सारे स्कूल्स में, और ऐसे में हम में से अधिकतर लोग घूमने फिरने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोग घूमने के लिए निकल भी चुके होंगे। तो ऐसे में मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जीप सफारी करेंगे, तो ये आपने 25 मई से पहले कर लेना है। और ऐसा क्यों करना है? ये करना इसलिए है क्योंकि 25 मई से जीप सफारी जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब के सीज़न के लिए, जी हाँ, अब तक के सीज़न के लिए बंद हो रहा है। उसके बाद फिर से खुलेगा, लेकिन फ़िलहाल 25 मई से जीप सफारी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बंद हो रहा है। अगर आपने प्लान किया हुआ है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप जाएंगे और वहाँ जाकर जीप सफारी और अलग अलग चीज़ों को आप निहारेंगे, तो फ़िलहाल के लिए 25 मई से पहले आपको यहाँ पर घूमने के प्लान को कर लेना है। तो चलिए इसी को लेकर कर लेते हैं थोड़ी और बातें। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 25 मई से जीप सफारी जो है वो बंद रहने वाली है, क्योंकि राज्य में मॉनसून का मौसम तेजी से नजदीक आ रहा है। अधिकारियों ने ये भी बताया है कि पार्क में इस सीजन के लिए हाथी सफारी पहले ही बंद कर दी गई है। एक अधिकारी का कहना है कि हाथी और जीप सफारी अक्टूबर नवंबर तक मॉनसून खत्म होने के बाद फिर से शुरू हो जाएंगी। पिछले कुछ सालों में ये पार्क राज्य का सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल बन गया है। यूनेस्को की इस विश्व धरोहर स्थल पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी ने इस दर्जे को और भी पुख्ता कर दिया है। तो फिलहाल के लिए यानी कि 25 मई से जीप सफारी जो है वो बंद रहने वाली है। और अगर आपने जीप सफारी करनी ही करनी है, तो आपने या फिर 25 मई से पहले यानी कि 24 मई तक आप कर सकते हैं, या फिर अगली बार जब जीप सफारी फिर से खुलेगी तो तब आपने कर लेना है। तो प्लानिंग आप उस हिसाब से करें। और भाई, गर्मियों के जो छुट्टियां हैं ना, उसके साथ तो कई सारी यादें हम सब की जुड़ी होती है ना। जी हाँ, बचपन में जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो बस एक ही मिशन होता था कि भाई गर्मियों की छुट्टियां यानी कि नैनीहाल हमने जाना ही जाना है। इसके अलावा कहीं और अगर जाए तो वो नैनीहाल वाली जो फीलिंग है ना, वो नहीं आती थी। और वो फीलिंग जब तक ना आए, तब तक गर्मियों की छुट्टियों का जो आनंद है वो पूरे तरीके से नहीं मिल पाता था। खैर, ये तो मेरा सोचना है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि आप भी मेरे सोच के साथ आपकी सोच जो है वो मिलती हो। लेकिन अधिकतर लोग ये सोचते थे जब हम सब बचपन में छोटे हुआ करते थे। जी हाँ, बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो सबसे पहला और बड़ा मिशन तो यही होता था कि गर्मियों की छुट्टियाँ

यानी कि नानी हाल तो जाना ही जाना है भाई, कहीं और जाए ना जाए, लेकिन वो जगह तो बिल्कुल फिक्स रहती थी। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद बातें करेंगे आज के खास दिन को लेकर। तो अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:33 मिनट है स्टूडियो की घड़ी का समय और फिर एक बार शर्मिशा सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती है। कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप वेबशॉप और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 FM रेनबो चैनल। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर जो कि हमारा ऑफिशियल ऐप है इस पर भी हमारा ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए नॉनस्टॉप गपशप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त गपशप कर लेते हैं स्पेशल वाले बर्थडे को लेकर और जान लेते हैं कि आज कौन आखिर अपना बर्थडे मना रहे हैं। बेशक जिनका मैं जिक्र करने वाली हूँ, जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उनका अधिकतर नाम लिया जाता है टॉलीवुड की दुनिया में, यानी कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम काफ़ी चर्चित है, काफ़ी पहचान उन्होंने बनाई है अपनी फिल्मों के ज़रिए। लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड की दुनिया में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, उन्होंने अपने बंगाली फिल्म को लेकर काफ़ी नाम कमाया है बॉलीवुड की दुनिया में भी। तो चलिए किन शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ, क्या है उनका नाम और फिल्मों की दुनिया में किस तरीके से जुड़े हुए हैं ये शख्स बताना चाहूँगी आप सभी श्रोताओं को। तो शिव प्रसाद मुखर्जी, जी हाँ शिव प्रसाद मुखर्जी जो कि जाने माने डायरेक्टर हैं, इनका नाम अधिकतर लिया जाता है टॉलीवुड की दुनिया में, यानी कि बंगाली फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चित हैं ये शख्स। तो आज मना रहे हैं शिव प्रसाद मुखर्जी अपना जन्मदिन। शिव प्रसाद मुखर्जी एक प्रमुख भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता हैं जो कि मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में अपने शानदार कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वे नंदिता रॉय के साथ मिलकर विंडोज प्रोडक्शन के तहत कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्माण और निर्देशन कर चुके हैं। नंदिता रॉय के साथ उनकी जोड़ी बंगाली सिनेमा की सबसे सफल निर्देशक जोड़ियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने साल 2011 में फिल्म इच्छे से अपने निर्देशन करियर की शुरुआत कर ली थी। उनकी कुछ सबसे प्रशंसित फिल्मों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कॉन्टू की, एक ऑर्गन कैंसर सर्वाइवर की प्रेरक कहानी है ये फिल्म। इसके बाद मैला शेषे, पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों पर आधारित एक भावुक फिल्म बनाई गई थी मैला शेषे। इसके बाद हामी फिल्म के बारे में भी बात की जा सकती है, स्कूली बच्चों और उनके माता पिता के जीवन पर आधारित एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बनी थी। इसके अलावा पोस्तों दादा दादी और माता पिता के बीच बच्चे की कस्टडी पर आधारित एक सामाजिक फिल्म थी फिल्म पोस्तों। फिल्म निर्माण के अलावा शिव प्रसाद एक बेहतरीन अभिनेता भी रहे हैं। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में जैसे कि कॉन्टू और हामी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी।

दिग्गज फिल्मकार शिव प्रसाद मुखर्जी ने नंदिता रॉय के साथ मिलकर अपनी अत्यधिक प्रशंसित बंगाली फिल्मों के हिंदी रीमेक के माध्यम से बॉलीवुड में कदम रखा। शास्त्री विरुद्ध शास्त्री, जी हाँ, शास्त्री विरुद्ध शास्त्री, जो कि बनी थी साल 2023 में, ये शिव प्रसाद मुखर्जी और नंदिता रॉय की पहली हिंदी फिल्म थी। ये उनकी अपनी ही सुपरहिट बंगाली फिल्म पोस्तों का हिंदी रीमेक है। एक पारिवारिक ड्रामा और आधारित इस फिल्म में परेश रावल, नीना कुलकर्णी और मिमी चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म एक 7 साल के बच्चे की कस्टडी और दादा दादी के प्यार के भावात्मक टकराव को दर्शाती है। तो बात हो रही थी बेहतरीन शख्स को लेकर, जिनका नाम है शिव प्रसाद मुखर्जी। आज है उनका जन्मदिन, तो चलिए ढेरों शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर। बात हो रही थी डायरेक्टर शिव प्रसाद मुखर्जी को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, और फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए। उसके बाद ज़रूर से ज़रूर बात करूंगी आज के खास दिन को लेकर, बताऊंगी आपको कि आज का दिन आखिर किस वजह से मनाया जाता है, क्या नाम दिया गया है आज के दिन को मनाने के लिए। फिलहाल आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीपता की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

दशमस्कर 48 मिनट हिस्ट्री घड़ी का समय और चलिए नॉन स्टॉप गपशप कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बताऊं आपको कि आज के दिन को आखिर किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या नाम दिया गया है आज के दिन को मनाने के लिए। तो वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है, यानी कि हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आज के दिन को डेडिकेट किया गया है मधुमक्खियों के नाम। अब कोई भी दिन मनाने के पीछे एक कहानी तो ज़रूर होती है, एक इतिहास भी होता है ना। तो इतिहास इस दिन से जुड़ा कुछ ऐसा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था आज ही के दिन, लेकिन साल था 2018। अब एक मज़ेदार सवाल ये उठता है कि आखिर आज का ही दिन क्यों चुना गया इस दिन को मनाने के लिए, कोई और दिन क्यों नहीं? किसी और दिन भी तो मनाया जा सकता है इस दिन को मनाने के लिए, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आज ही के दिन को चुना गया। और इसके पीछे एक रोचक कहानी ये है कि ये तारीख आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता माने जाने वाले एंटोन जॉनशा के जन्मदिन का प्रतीक है। उनका जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था, जो मधुमक्खी पालन में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और उन्हीं के जन्मदिन को याद रखने के लिए, याद करने के लिए आज के दिन को चुना गया। अब मधुमक्खी के महत्व की अगर हम बात करें तो हमारी थाली में मौजूद लगभग एक तिहाई फसलें और खाद्य पदार्थ मधुमक्खियों जैसे परागणों को पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा ये कीट जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका पालन करते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियों से जुड़े अगर रोचक तथ्य की मैं बात करूं तो केवल मादा मधुमक्खियां ही डंक मार सकती हैं, नर मधुमक्खियों में डंक नहीं होते। इसके अलावा मधुमक्खियां एक विशेष प्रकार का डांस के जरिए आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को फूलों की दिशा भी बता सकते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? इसके अलावा एक और मज़ेदार फैक्ट आपके साथ साझा करूं कि एक छत्ते की मधुमक्खियों को मात्र सिर्फ और सिर्फ आधा किलो शहद बनाने के लिए लगभग 55,000 मील से ज़्यादा उड़ना पड़ता है, यानी कि कितना ज़्यादा मेहनत उन्हें करना पड़ता होगा सिर्फ और सिर्फ आधा किलो शहद को तैयार करने में। तो ये तो है मधुमक्खियों से जुड़े खास बातें, क्योंकि आज के दिन को मनाया जा रहा है वर्ल्ड बी डे के तौर पर, यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। अब बॉलीवुड की दुनिया में ये संगीत को ही ले लीजिए, गीत संगीत में भरपूर ऐसे गाने हैं जो कि डेडिकेटेड है मधुमक्खियों के नाम, जी हाँ, भंवरों के नाम। तो चलिए एक ऐसा ही गाना आप सभी के लिए, यशोदास और आशा भोंसले की आवाज़ में।

इसी के साथ आज का नॉनस्टॉप गपशप कार्यक्रम होता है यहीं पर समाप्त। मिल रही हूँ बहुत जल्द, समय रहेगा 11:10 और दोबारा मुझे सुनने के लिए आपने ट्यून करना है 100.1 FM गोल्ड। लेकर आऊंगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, तब तक के लिए ट्यून रहेगा 107 FM रेनबो चैनल के साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम के अगले और आखिरी गीत को।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो

0: दर्द करारा उठ सकता है दिल में, लेकिन उसकी दवा भी तो आसपास होनी जरूरी है। और ये जो दवा हम लेकर आते हैं आपके लिए, आपके दुखते दिल को राहत पहुंचाने के लिए, थोड़ी फिल्मी सी दवा है लेकिन बड़ी कारगर दवा है। आपको एकदम चुटकियों में आराम दिला दे इस तरह का संगीत और इस तरह की सिनेमा वाली बातें हम लेकर आते हैं रोजाना कार्यक्रम तीन का तड़का में। शुरू हो चुका है आपका अपना मैटिनी शो, जो रोजाना दोपहर 3:02 से शाम 4 तक आप सुन पाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत चैनिका है आज आपके साथ, और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, आपको सुनवाएंगे और भी खूबसूरत नए नए हिंदी फिल्मी गाने और फिल्मों से जुड़ी तमाम खबरें आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए, अभी समय हो चला है परियोजना प्रस्तुति का।
1: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: आज हम परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत बातें करेंगे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के बारे में, जिसे हम अमृत भी कहते हैं। इसका उद्देश्य देश के शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बेहतर

0: बनाना है ताकि शहरी निवासियों, खासकर गरीब और वंचित लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। यह मिशन, जिसे जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, भारत के शहरों में शहरी पुनरुद्धार परियोजनाएं चलाकर मजबूत सीवरेज नेटवर्क और पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने पर आधारित है। ये जो योजना है, ये सुनिश्चित करती है कि हर घर में नल के जरिए पर्याप्त पानी मिल सके। इसके अलावा अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए प्रभावी सीवरेज सिस्टम और उपचार संयंत्र को विकसित करने के लिए भी ये जो योजना है, ये जो मिशन है अमृत, ये वचनबद्ध है। इसके अलावा शहरों में बाढ़ को रोकने के लिए बेहतर जल निकासी की प्रणाली बनाना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और पैदल चलने और साइकिल चलाने जैसी गैर मोटर चालित परिवहन सुविधाओं का निर्माण करना भी इस मिशन का उद्देश्य है। इसके अलावा हरियाली और शहर में पार्कों को विकसित करने और शहर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी यह मिशन प्रतिबद्ध है। अमृत का दूसरा चरण, जिसे अमृत 2.0 कहा जाता है, अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था और इस अमृत 2.0 मिशन के लक्ष्य ये है कि देश में सभी शहरों में हर घर तक नल का कनेक्शन पहुंचे, हर घर में नल का कनेक्शन हो और पहले चरण में शामिल 500 शहरों में सीवरेज और सेप्टिज प्रबंधन को 100% तक बढ़ाने का भी संकल्प लिया है अमृत 2.0 ने। इसके अलावा जल निकायों का कायाकल्प, भूजल प्रबंधन और उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करके शहरों को जल सुरक्षित बनाने के लक्ष्य को भी पाने के लिए प्रतिबद्ध है अमृत 2.0। अमृत मिशन एक व्यापक शहरी विकास कार्यक्रम है जो स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर शहरों के समग्र विकास में मदद करता है।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जा रही है तीन का धड़का, चैनिका है आपके साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। और अभी अभी मुझे पता चला मौसम विभाग की तरफ से एक पीली यानी येलो वार्निंग आई है, और आप सब सचेत हो जाएं जो रहते हैं मालदा जिले में, क्योंकि आने वाले 2 से 3 घंटों के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ आंधी तूफान और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। और ये जो हवाएं चलेंगी ये 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, और मालदा जिले के कई हिस्सों में

इस तरह के मौसम के आने के आसार हैं और इसके लिए मौसम विभाग ने येलो वार्निंग जारी की है। तो बेहतर यही होगा कि आने वाले 2 से 3 घंटों के लिए आप सुरक्षित रहें और आपके जो मित्र हैं, परिजन हैं, स्वजन हैं, उनको भी आप ये सूचना, अगर अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो ये सूचना आप ज़रूर दे दें कि मालदा जिले के आसपास के कुछ इलाकों में और मालदा जिले में आने वाले 2 से 3 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश, साथ में तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

सुन रहे हैं आप तीन का तड़का चयनिका के साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है सिनेमा की बातें। जैसे कि मैंने कहा हर रोज हम करते हैं, आज भी करेंगे ढेर सारी फिल्मी बातें शाम 4 बजे तक। अभी फिलहाल 3:17 और देखते ही देखते 3:18 और 2 सेकेंड्स स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय और कार्यक्रम को एकदम शुरुआत में चलिए ना हैप्पी बर्थडे बोल दें हम NTR जूनियर को। आज है उनका जन्मदिन और कैसे बर्थडे विश करेंगे यानी उनकी एक फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे और क्या। चलिए सुनते हैं वॉर 2 से सचित टंडन और साज भट्ट की आवाज़ में ये तड़कता फड़कता ट्रैक। सुनते रहें FM रेनबो।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर।
1: आने वाली जो फिल्म है रामायण, वो तो बहुत अधिक चर्चा में है। मैंने खुद कई बार

इस फिल्म से जुड़ी कुछ खबरें आपके साथ साझा की। अब नई खबर इस फिल्म से जुड़ी बड़ी एक रोचक खबर हमें मिली है, वो ये है कि फिल्म मेकर्स ने जिस तरह के आंकड़े जिस तरह का डेटा उन्होंने साझा किया है, पब्लिक किया है, उन्होंने कहा है कि इस फिल्म ने पूरी दुनिया भर से 10,000 क्रू मेंबर्स को एक जगह किया, यानी इस फिल्म में काम करने वाले क्रू मेंबर्स की संख्या 10,000 है। और ये अपने आप में कह सकते हैं हम कि ये एक रिकॉर्ड ही है भारतीय मूवी की, किसी भारतीय फिल्म की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो इस तरह का एक लार्ज, इतना बड़ा एक क्रू, इतने बड़े पैमाने पर लोग एक साथ शायद ही किसी और फिल्म पर जुड़े हों, तो 10,000 लोग मिलकर एक फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, ये एक मासिव वर्कफोर्स है। और जहां पर फिल्म निर्माताओं के अनुसार पूरी दुनिया भर से उन्होंने प्रोडक्शन डिज़ाइन, विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन, कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स और अलग अलग टेक्निकल डिविजन के लिए लोगों को हायर किया, न केवल देश से बल्कि विदेश से भी, और कुल मिलाकर 10,000 लोगों ने मिलकर इस फिल्म पर काम किया, अभी भी कर रहे हैं। नमित मल्होत्रा की एम्बिशियस ये फिल्म है, रामायणा, प्रोड्यूसर है वो और निर्देशक हैं इस फिल्म के नितेश तिवारी, और सब लोग बड़ी ही बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी बड़े सारे प्रयोग हुए हैं फिल्मों में, बहुत सारी फिल्में, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार सिनेमा के पर्दे पर हम रामायण देखेंगे, इससे पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन जिस लार्ज स्केल पर इस फिल्म को प्लान किया गया है और एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बनाई जा रही है फिल्म, पोस्ट प्रोडक्शन में शायद अब, क्योंकि इस साल दिवाली में रिलीज होने की बातचीत तो फिलहाल चल ही रही है, तो ये सच में काबिल तारीफ है। और 10,000 लोग एक साथ किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करें, मेरे ख्याल से इससे पहले सच में किसी भी भारतीय सिनेमा में हमने ऐसा शायद नहीं देखा होगा। और जहाँ तक सवाल है निर्देशक नितेश तिवारी का, तो उनकी तो मैं क्या ही कहूँ, ये मिथोलॉजी वाली फिल्म पहली बार वो बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई हैं, देश विदेश में उन फिल्मों के चर्चे रहे हैं, जिस तरह दंगल की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो फिल्म का रहा, वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म ये बनी, और दंगल का मैं क्या ही कहूँ, इसके अलावा छिछोरे आपको याद है ना, तो अलग अलग किस्म की फिल्में बनाई हैं नितेश तिवारी ने और अपना लोहा मनवाया है। 22 मई को उनका जन्मदिन होता है, और आज क्योंकि रामायण की बात छिड़ी, दंगल की भी बात आ गई, तो चलिए एक गीत दंगल फिल्म का सुना जाए, मतलब लहू आपका गर्म हो जाता है ये गाना सुनकर, दलेर मेहंदी ने इस गाने को गाया है, चलिए सुनते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ ये गीत प्रीतम के संगीत में दंगल फिल्म से।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: रामचरण और जाह्नवी कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म पेडी के लिए मुंबई में रविवार को अपनी प्रमोशंस जो हैं वो किक स्टार्ट किए। वो और भी दूसरे जगहों पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इवेंट्स करेंगे और ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है 4 जून को। इस फिल्म में दोनों के अलावा यानी रामचरण और जाह्नवी कपूर के अलावा दिव्येंदु शर्मा, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और भी दूसरे मुख्य अच्छे अच्छे कलाकार नजर आने वाले हैं। और अपने प्रमोशनल इवेंट में रामचरण थोड़े नॉस्टैल हो गए और इस फिल्म के बारे में जब उन्होंने बात की और जिस तरह वो पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे जाह्नवी के साथ, उन्होंने एक बड़ा ही हार्टफेल्ट कनेक्शन बयां किया जो कि उनके पिता चिरंजीवी और श्रीदेवी के बीच में जो एक ऑन स्क्रीन जो एक कनेक्ट था उसके बारे में वो बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि किस तरह से कितनी सारी मेमोरेबल तेलुगु फिल्म्स दोनों ने मिलकर एक साथ ऑडियंस को दी थी, चिरंजीवी और श्रीदेवी ने, जिनमें बहुत सारी फिल्मों के उन्होंने नाम भी लिए, जिस तरह जगदिका विरुडू, अतिलोका सुंदरी, रानी कसूला, रंगम्मा और तेलुगु सिनेमा के सबसे चहेते ऑन स्क्रीन पेयर्स में नाम शामिल हुआ था चिरंजीवी और श्रीदेवी का। तो कहते हैं रामचरण की जो लेगेसी है, इस लेगेसी ने पेडी को और भी अधिक मीनिंगफुल और भी अधिक खूबसूरत बना दिया है। तो चलिए, पेडी अगर आप देखते हैं दूसरी भाषाओं की फिल्में तो ये फिल्म, तेलुगु फिल्म ज़रूर देखेगा। और आजकल तो बहुत सारी फिल्में ऐसी आती हैं जो बहुत सारी भाषाओं में रिलीज़ होती हैं, हिंदी फिल्में तमिल तेलुगु कन्नड़ा में रिलीज़ होती हैं, कन्नड़ा फिल्में तेलुगु फिल्में हिंदी में भी रिलीज़ होती हैं। तो मौका मिलता है अगर तो आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर एक गीत सुनते हैं, जाह्नवी कपूर की बात छिड़ी है तो चलिए आपको हम मिसेज एंड मिस्टर माही से ये वाला गाना सुनवाते हैं नीति मोहन की आवाज़ में।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: चैनिका लेकर आई है आज दिन का तड़का और अभी फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय 3:36 और 40 सेकंड्स। हम फिल्मों की बातें कर रहे हैं और आने वाली फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो एक बहुचर्चित फिल्म, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है ना निर्देशक और अभिनेता का इस फिल्म में, उसके बारे में तो बात होनी ही है। और फिल्म है मैं वापस आऊंगा, दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म जून महीने में रिलीज होगी और इस फिल्म के निर्माताओं ने 19 मई 2026 को इस रोमांटिक ड्रामा का ट्रेलर जारी किया, यानी कल इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो जारी किया गया है। फिल्म की कहानी 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और पूरी जो कहानी है इसी ऐतिहासिक घटना के आसपास घूमती है। और ट्रेलर में, अगर आपने ट्रेलर देखा है फिल्म का तो आपने ज़रूर ये देखा होगा कि एक लोकप्रिय यूट्यूबर की भूमिका में है दिलजीत दोसांझ, जितना समझ आता है देखकर। और अपने दादा नसीरुद्दीन शाह को वो देखते हैं मृत्युशैया पर और कैसे वो अपनी बिछड़ी हुई जो प्रेमिका है उसके लिए तड़प रहे हैं। ये देखकर उनको लगता है, दिलजीत को लगता है कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें जाना चाहिए बॉर्डर पार, सरहद पार, उस लड़की को ढूंढने, और जिनसे उनके दादा 78 वर्षों से नहीं मिले हैं, क्या वो मिल पाएंगे उनके बारे में पता चलेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक कहानी, एक इंटरेस्टिंग सा प्लॉट। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है, इम्तियाज़ अली और दिलजीत दोसांझ का कॉम्बिनेशन। डायरेक्टर जो है वो इम्तियाज़ अली हैं और यार रहमान का संगीत है। फिल्म में इरशाद कामिल ने गाने लिखे हैं। शर्वरी वाघ और वेदांग नारंग युवा प्रेमिकों की भूमिका में इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं इस फिल्म का। और इस कॉम्बिनेशन की अगर बात छिड़ी है तो एक ये वाला गीत अमर सिंह चमकीला से आपको मैं ज़रूर सुनवाना चाहूँगी। सुनते रहें, साथ रहें FM रेनबो

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: चैनिका के साथ सुन रहे हैं आप तीन कथर का ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता, और हमने अभी अभी विदा करो सुना अमर सिंह चमकीला फिल्म से। संगीतकार या रहमान और गीतकार थे इस फिल्म के इरशाद कामिल। बड़ा ही एक खूबसूरत सा दौर अभी चल निकला है जहां पर हम ऐसी फिल्मों को दोबारा से जिएंगे जिन्होंने बहुत नाम कमाया था, ऐसी कहानियाँ जो हम जैसी सिनेमा पागल पब्लिक जो है वो कई सालों से इंतज़ार कर रही थी, चाह रही थी कि ये फिल्में फिर से आए लौट कर। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि आमिर खान ने रिसेंटली ये कंफर्म किया, मैंने यहीं आपको बताया था कि 3 Idiots का पार्ट 2 जो है वो इन मेकिंग है और सेम तरीके का ह्यूमर हमें इस फिल्म में मिलेगा और एक कहानी जो होगी वो थोड़ी अलग होगी। और राजकुमार हिरानी ही इस फिल्म को बनाएंगे और अभी ये जो कहानी है इस पर काम चल रहा है, अभिजात जोशी और राजकुमार हिरानी मिलकर ये फिल्म जो है ये लिख रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, याद है आपको 2018 की फिल्म तुम्बड़, सोहम शाह ने एक अलग ही स्पेस बनाया जहां उन्होंने हॉरर जो जॉनर है उसको फोकलोर के साथ लोक जो कथा है हमारे देश की उससे जोड़ा और इन दोनों चीज़ों को हिंदी सिनेमा में मिलाकर उन्होंने एक अलग ही तरह की मास्टरपीस बनाई। और ये तुम्बड़ अपने अलग एक फॉलोइंग के लिए ये जानी जाती है, कई लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को बहुत सराहा, क्रिटिक्स का बहुत प्यार मिला। तो 2024 में ये री रिलीज की गई तब तो फिर और अधिक मतलब इसको लोगों का प्यार मिला, तो सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग री रिलीज का इसका जो है इसका रिकॉर्ड भी है। तो अब सुनने में आ रहा है कि सोहम शाह प्लान कर रहे हैं इसका भी एक सीक्वल वो निकालेंगे। और दृश्यम के बारे में तो आप जानते ही हैं, अक्टूबर 2 जो है जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेट है फिल्म के लिए, तो वो 2 अक्टूबर को इस साल दृश्यम 3 रिलीज़ होने वाली है और ये जो है इसकी जो शूटिंग है एकदम ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे वेलकम टू जंगल की और अगले मतलब शायद क्रिसमस पर या जो भी है, एक्चुअली नहीं मेरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पिछले साल क्रिसमस पर अक्षय कुमार ने फैंस को सरप्राइज़ किया और उन्होंने जो टीज़र था फिल्म का उसको अनवील किया और ये वेलकम फ्रेंचाइजी की 3री फिल्म होगी। और ये जो शूटिंग है इस फिल्म की ये कंप्लीट हो चुकी है, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब ऑडियंस जो है वो वेट करिए ईगरली और लगता है शायद जून के महीने में 26 तारीख को या फिर किसी और दिन ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। जून जो है वो ऑफिशियली लॉक किया गया है इस फिल्म की रिलीज़ के लिए। और एक फिल्म की यहाँ पर मैं बात बिल्कुल करना चाहूँगी, वो है एक और बहुचर्चित फिल्म, बड़ी ही प्रिय फिल्म सबकी, जिसका नाम है गोलमाल। गोलमाल फ्रेंचाइजी की फिल्मों को देखने के लिए जिस तरह से ऑडियंस जो है वो आतुर रहती थी, बहुत समय बीत गया, इसकी अगली फिल्म नहीं आई, अगली इंस्टॉलमेंट की बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये रोहित शेट्टी जो हैं उन्होंने मार्च में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है 5th इंस्टॉलमेंट के बारे में, यानी गोलमाल 5 जो है वो आने वाली है और ओरिजिनल कास्ट इसमें रहेगी, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल केमू, तुषार कपूर और शर्मन जोशी, ये सभी इस फिल्म में नज़र आएंगे। तो अच्छा ही है फिर, ये बड़ी बड़ी जो फिल्में जो सुपर हिट फिल्में वो दोबारा से थोड़े से अलग अवतार में कुछ नयापन लिए अगर दोबारा लौटती हैं सिल्वर स्क्रीन पर, तो इससे ज़्यादा मज़े की बात और क्या हो सकती है हम फिल्म प्रेमियों के लिए। और गोलमाल की बात जब छिड़ी है तो चलिए ना ये वाला सुनते हैं गाना, शान और अनुष्का मनचंदा ने इस गीत को गाया और ये है गोलमाल 3 से ये गाना कुमार ने जिसके बोल लिखे थे और संगीतकार थे प्रीतम। सुन रहे हैं आप तीन का तड़का।

बिल्कुल, हर दिन ऐसे ही जियो जैसे कि आखिरी हो, पता नहीं कल क्या हो, हम हो ना हो, इसलिए वही जोश, वही उत्साह, वही खुशी दिल में लिए आगे बढ़ो, जो कि शायद अंतिम दिन अगर हमें पता चल जाए कि कल के बाद और कुछ, यानी आज के बाद कुछ और रहने नहीं वाला है, तो जिस तरह का उत्साह होगा, हर एक काम को ख़त्म करने की जल्दी होगी, हर एक चीज़ हम बड़े तत्पर होकर एकदम से बहुत ही आग्रह के साथ खुशी से करेंगे, वैसा ही वाला हर दिल मन का जो मंजर है वो रहना चाहिए। और हम आपको हमेशा हमेशा यहाँ पर आपके मन के मंजर को इसी तरह रखने का सारा इंतजाम करके रखते हैं, आपको हम हेल्प करते हैं खुश रहने में। और इसीलिए तो अभी ये जो एक घंटा था ये एकदम जबरदस्त धमाकेदार तरीके से हमने बिताया, साथ में बिताया चैनिका। अब धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जा रही है 4 बजे की ओर कार्यक्रम को लेकर, इसलिए आपको अब बस अंतिम बात आपको बस यही मैं कहना चाहती हूँ, ये भी बड़ी अच्छी सी खबर है, वो ये कि हमने सुना है कि तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्ती इम्तिहान लेती है, लेकिन दुश्मनी या फिर मनमुटाव जब दोस्ती में बदले, तो उसके लिए कोई गाना अगर आपको

याद आता है तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में भी। रणवीर सिंह बड़ी चर्चा में, एक धुरंधर के लिए, मतलब वो धुरंधर हो गए, ऐसी फिल्म उन्होंने बताइए बनाई है कि अपने करियर के ऑल टाइम हाई फेज में अभी फ़िलहाल वो हैं। इसके अलावा अभी वो चर्चा में इसलिए भी हैं कि उन्होंने डॉन 3 छोड़ दी और उसके बाद फिर से चर्चा में है, अच्छी खबर के लिए, वो ये कि मनमुटाव जो उनका हो गया था आदित्य चोपड़ा के साथ, यशराज फिल्म्स के साथ, वो दूरी जो है उन्होंने पाट दी और दुश्मनी जो है वो दोस्ती में बदल गई है। ऐसी खबरें हैं कि YRF ऑफिस में एक बंद दरवाजे के पीछे हुई मीटिंग में दोनों ने, यानी रणवीर सिंह ने और आदित्य चोपड़ा ने, दोस्ती का हाथ बढ़ाया एक दूसरे की तरफ, और बढ़ाना भी उनको चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम शुरुआती दौर की तरफ देखें, रणवीर सिंह की फिल्मों की बात हम करें, तो उनका जो लॉन्च हुआ वो यशराज की फिल्मों का हाथ थाम कर ही हुआ। इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया फिल्में उन्होंने दी, और उसके बाद ये जो अलगाव किसे पसंद है, किसे अच्छा लगता है, ये तो ये अच्छा ही है ना कि एक दूसरे के रिश्ते में फिर से सुधार लाने की कोशिश की है। और ऐसी खबर भी है कि फिर से वो कोलैबोरेट करेंगे एक मेजर प्रोजेक्ट के साथ। बाप रे बाप, इतना बड़ा धमाका मतलब ठीक है ना, अब इसी नोट पर कार्यक्रम को समेट दें तो अच्छा है ना। तो चलिए, आप सबके लिए चलते चलते इश्क जलाकर फ्रॉम धुरंधर, और चने का को आप दे दें इजाजत, लेकिन मिस जरूर कीजिएगा, मिस करेंगे तभी तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे शाम 7:02 पर, कार्यक्रम छायालोक, हम साथ साथ के साथ। आज है बुधवार की शाम, तो हम साथ साथ आपके साथ रहेगा। और एक बात, बड़ी ज़रूरी बात, कि यहाँ पर आगे बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं आपका इंतज़ार, तो उन कार्यक्रमों के साथ आप बने रहें, और 7 बजे मेरे साथ आप मिलिएगा। सुनते रहें, साथ रहें FM रेनबो कोलकाता। आप सुन रहे थे फिलहाल 3 का तड़का चैनिका के साथ।

0: টেলিলয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: हम साथ साथ

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक हम साथ साथ।
2: जिंदगी में ना अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो ये जो लाइफ की जो जर्नी है ना, ये आसान हो जाती है। और पार्टनरशिप केवल ये जो जिंदगी का जो सफर है इसमें नहीं, बल्कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर अच्छे पार्टनर्स मिल जाए, जो आपके साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर काम करे, कंधे से कंधा लगा

कर आगे बढ़े तो फिर बात ही क्या है, काम आसान हो जाता है और जो प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही बेहतरीन उभर कर सामने आता है, निखर कर सामने आता है। और ऐसी ही कुछ जोड़ियों की हम बात करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं बुधवार का छाया लोक चैनिका के साथ और हम बातें कर रहे हैं ऐसी कुछ जोड़ियों की जो साथ आए तो क्या मुकम्मल रही उनकी ज़िंदगी, क्या बेहतरीन काम उन्होंने किया एक साथ। फिल्मी जोड़ियों की बात हम करते हैं हर हफ्ते आज के दिन, और ये पहला घंटा आज मैंने किया है नाम जतिन ललित और कुमार शानू के। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गाने कुमार शानू ने उनके लिए गाए, 140 गाने। अगर हम सभी प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो उन सब में सबसे ज़्यादा गाने कुमार शानू ने गाए जतिन ललित के लिए। और आज मैं कोशिश करूँगी इस पहले घंटे में जितने गाने हम समेट सकें, बातें एकदम कम, ज़्यादा से ज़्यादा गीत जतिन ललित के संगीत में, कुमार शानू की आवाज़ में। तो आप तैयार, कमर आपकी बांध लें और कान जो है बस सटा कर रखें हमारे साथ। एफएम रेनबो छोड़कर कहीं ना जाइएगा, आज का ये जो सफर है बहुत खूबसूरत बीतने वाला है। ये अगला गीत जावेद अख्तर ने लिखा था और फिल्म का नाम बड़ा दिन। कुमार शानू, ओनली ओनली ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता सुनते हैं।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

साथ सुन रहे हैं आप छह लोग हम साथ साथ। आज बुधवार की शाम रहता है हाजिर और आज चैनिका के साथ आप सुन रहे हैं ये खास पेशकश। पहले घंटे में आज मैं आपको सुनवा रही हूं जतिन ललित और कुमार शानू की जोड़ी के कुछ बेहतरीन खूबसूरत गाने। और ये गीत जो हमने अभी भी सुना, कभी हाँ कभी ना फिल्म का गीत है, बेहद मशहूर गाना। मजरू सुल्तानपुरी ने इस फिल्म की लिरिक्स लिखी थी और जतिन ललित ने अपने एक साक्षात्कार में ये बताया कि ये तय हुआ जब गाने जब बन रहे थे कि पहले धुनें बनेंगी और उसके बाद मजरू सुल्तानपुरी उनमें अल्फाज सजाएंगे। और ये उन्होंने कहा, जतिन ललित ने बताया इस साक्षात्कार में, कि किस तरह से उन्होंने हर एक सिचुएशन पर काम किया और सिचुएशन को ध्यान में रखकर गाने कंपोज किए। और ऐसा था कि उनकी सॉन्ग बैंक में, हर संगीतकार के पास अपना एक सॉन्ग बैंक होता है जहां से कुछ धुनें ऐसी हो सकती हैं जो किसी एक सिचुएशन पर फिट कर जाएं। तो इस फिल्म के लिए कोई भी गाना अपने सॉन्ग बैंक से वो नहीं दे पाए और बहुत मशक्कत हुई और उसके बाद हर सिचुएशन के लिए गाना बना। और ये था कि मतलब ये फिल्म ही ऐसी थी कि स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए गाने बनने थे। हाँ, और कोई भी एकदम स्ट्रेट कोई रोमांटिक गाना इस तरह का कोई था नहीं, या एक जनरल फिल्म सॉन्ग सिचुएशन भी इस फिल्म में नहीं थी, तो इसलिए इस फिल्म पर काम करना बेहद बेहद डिफिकल्ट था। तो पहले धुनें बनी, उसके बाद उन धुनों पर मजरू सुल्तानपुरी ने अल्फाज सजाए और फिर इस तरह से गाने बने। और बहुत ही टाइट बजट था फिल्म का, फिल्म बहुत बड़ी एक मेगा स्केल पर बनी एक फिल्म नहीं थी, बहुत ही छोटी सी फिल्म। कुंदन शाह निर्देशक थे और जैसे कि मतलब गानों की हम बात करें तो सारे के सारे गाने जो हैं इस फिल्म में वो सिचुएशनल थे, सिचुएशन के हिसाब से वो गाने लिखे गए और उसी तरह फिल्माए गए थे। तो सच में अच्छा लगता है ना, डाउन द मेमोरी लेन आप पहुंच जाएं ऐसी

फिल्मों की तरफ, ऐसी फिल्मों की गलियों में जहाँ पर आपकी यादें ताज़ा हों। और ये बड़ी मीठी यादें वाली फिल्म थी कभी हाँ कभी ना, उसी का एक गीत हमने आपको सुनवाया। अब चलते हैं एक बड़ी ही कमर्शियल सी साउंड ट्रैक वाली फिल्म की तरफ। एक युगल गीत है, कुमार शानू और अलका याग्निक ने इस गीत को गाया था और विशेष फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी। इंदिवर ने लिखा था इस गाने को मिस्टर आशिक फिल्म से। आपके लिए ये वाला गाना मेरा बड़ा ही फेवरेट सा गाना है, एकदम फिल्मी टाइप का गाना है। चलिए सुनते हैं ये गीत, सुनते रहें साथ रहें आप लोग, हम साथ साथ सुन रहे हैं छायालोक पर चैनिका के साथ ओनली ऑन FM Rainbow।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: പുരാനെ ദിനോ കാ സഫർ, പുരാനെ ഗീതോ കാ സിൽസില. ആപ് സുൻ രഹേ ഹൈ ഛായാലോക്, ഛായാലോക്, 107 FM റെയിൻബോ പർ. പുരാനെ ദിനോ കാ സഫർ, പുരാനെ ഗീതോ കാ സിൽസില, ഛായാലോക, ഛായാലോക്.
2: चैनिका है आपके साथ और हम साथ साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता. और कार्यक्रम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा है, दिल जो है एकदम नॉस्टैल हो गया. नॉस्टैल्जिया ही है हमें घेरे हुए, क्योंकि 90 का दशक और 2000 का दशक एकदम जतिन ललित और कुमार शानू के नाम ही तो था. और एक साथ मिलकर इन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्में हमें दी, इतना बेहतरीन संगीत दिया. कुछ कुछ होता है, प्यार तो होना ही था, खिलाड़ी, राजू बन गया जेंटलमैन, कभी हाँ कभी ना, गुलाम, खामोशी, जब प्यार किसी से होता है, प्यार किया तो डरना क्या,

क्या करें, ये और भी बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी जब कुमार शानू ने जतिन ललित के संगीत में गाया। और अभी अभी हमने राजू बन गया जेंटलमैन का एक खूबसूरत सा गाना सुना, ये आइकॉनिक एक गाना जहां शाहरुख खान भी एकदम फ्रेश नए हीरो और इतनी खूबसूरत तरीके से इस गीत को फिल्माया गया था और वैसे ही बुलंद आवाज़, टाइगर यूं ही नहीं कहा जाता था कुमार शानू को। और अब आपको वो वाला गाना मैं सुनवाऊं जिस गाने को साल 2024 में यूके के एक प्रसिद्ध मीडिया हाउस द्वारा यूके's फेवरेट 90s बॉलीवुड सॉन्ग का खिताब दिया गया। और यकीनन ये जब बेहतरीन गाने जो हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, जब हम भी बनाएंगे अपनी लिस्ट, तो 90 के दशक के गीतों में एकदम अव्वल नंबर के जो गीत होंगे ना, वहाँ पर ये गाना ज़रूर शामिल होगा। आप गेस करिए या फिर मैं सुनवा ही देती हूँ आप सबको, कुमार शानू और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये वाला गाना। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम साथ साथ,
2: और हम साथ साथ का ये जो पहला घंटा है अब सिमट जाएगा, और चलते चलते कुमार शानू की आवाज़ जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, और दूसरे घंटे में हम लेकर आएंगे एक नई जोड़ी। आप लोग बने रहे हमारे साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता।
3: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
4: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
3: उसे बताया क्यों नहीं?
4: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: हम साथ साथ

साथ दूसरा भाग है ये हम साथ साथ का चैनिका है आपके साथ हाजिर 8:09:40 फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय और इस दूसरे घंटे में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक संगीतकार गीतकार की जोड़ी जो साथ साथ रहे बहुत उम्दा संगीत एक साथ क्रिएट किया बहुत ही अच्छे गाने बनाए नोक झोंक भी जबरदस्त की मतलब मुझे तो लगता है हर फिल्म में इनकी एक दूसरे के साथ अनबन हो जाया करती थी लेकिन फिर भी उस अनबन के बाद भी जिस तरह के गाने इन्होंने बनाए काबिले तारीफ है बात कर रही हूँ मैं अनु मलिक और जावेद अख्तर की और अभी जो गीत हमने सुना उमराव जान फिल्म से था 2006 की उमराव जान जो जेपी दत्ता ने बनाई थी और इस फिल्म के बारे में बस यही कहना चाहती हूँ गाने अच्छे थे और वैसे तो न कमर्शियल ना क्रिटिकल किसी भी तरह की सक्सेस इस फिल्म को नहीं मिली थी लेकिन कोई बात नहीं म्यूज़िक बहुत लाजवाब था और यही वजह है कि आज के इस कार्यक्रम में मैंने ये गाना शामिल किया और अब बात करें जावेद अख्तर और अनु मलिक की अनबन की सबसे पहली अगला गाना जो मैं आपको सुनवाऊंगी वो भी जेपी दत्ता की ही फिल्म से था आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर का ये गीत मैं आपको सुनवाऊंगी जो बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गया जब रिलीज हुआ और अभी फिर से जब बॉर्डर पार्ट टू आई तो इस गाने को रिक्रिएट किया गया लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे कुछ मित्र हैं जो मेरे से इस बारे में बात कर रहे थे मेरे साथ और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इस वाले गाने में वो बात नहीं ये भी बहुत खूबसूरती से लिखा है जो बॉर्डर पार्ट टू का जो गाना है मनोज मुंतशिर ने लिखा है लेकिन जावेद अख्तर के संदेशे आते हैं कि जब बात होती है तो वो फिर अलग ही मंजर होता है जब रिलीज हुई थी फिल्म तब का सोचिए मतलब एकदम सुपर डुपर हिट संगीत गानी एकदम लाजवाब वैसी ही हिट फिल्म थी तो अपने एक बहुत पुराने इंटरव्यू में अनु मलिक एक बार बता रहे थे कि कैसे उन्होंने जब ये गाना पहली दफ़ा देखा जावेद अख्तर ने लिखा और अनु मलिक ने देखा तो उनको लगा कि इस गाने में पोएट्री है ही नहीं ये तो कविता ही नहीं इसमें छंद ही नहीं है तो ये गाना कैसे बनेगा उनको लगा कि जावेद अख्तर ने गाना ही नहीं लिखा उन्होंने प्रोज लिखा

एकदम कहानी की तरह उन्होंने वो पढ़ा और 11 से 15 पेज उनको लगा कि गाना बनेगा कैसे, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और जावेद अख्तर ने 3 बड़े बड़े अंतरे लिखे गाने के और कुछ ना कुछ मिसिंग था, क्या मिसिंग था। और वो भी अपने एक साक्षात्कार में कहते हैं कि उनको लगा कि इस गाने को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन चाहिए, तो उन्होंने चंद लाइनें लिखी फ्री वर्स में। यानी पहले की जो 3 अंतरे थे वो तो किसी तरह से अनु मलिक को लग रहा था कि ये तो कहानी है गाना नहीं है, लेकिन फिर भी गाना बना, उस पर उन्होंने कंपोज कर दिया था। अब इसको कंक्लूड कैसे किया जाए, तो एक फ्री वर्स में कुछ एक लाइंस उन्होंने लिखी, वो लाइंस याद है ना आपको भी, मुझे भी है, गुजरने वाली हवा ज़रा मेरा इतना काम करेगी क्या। तो इसमें ट्यून नहीं थी कोई, तो जब दोबारा मिले अनु मलिक जावेद अख्तर तो बताया जावेद अख्तर ने कि कुछ और भी मैंने लिखा है और वो दिखाया नहीं था तब तक। तो ये फ्री वर्स जो था एकदम से मुक्त छंद की कुछ लाइंस थी, ये दी उन्होंने अनु मलिक को और लगा कि अनु मलिक को थोड़ा टाइम लगेगा इसको धुनों में, मतलब धुन में पिरोने के लिए, सुरों में पिरोने के लिए कुछ एक समय तो इनको ज़रूर लगेगा। और जैसे ही वो बातचीत करते करते अनु मलिक ने उसको कंपोज कर डाला था। और ये जो कहानी है ये जावेद अख्तर ने बॉर्डर की 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के दौरान शेयर की थी। तो इतना कुछ इस गीत के बारे में हमने बात कर ली, बहुत सारी बातें हो गई, तो गाना फिर सुनना भी तो चाहिए ना। चलिए आपको सुनवाती हूँ मैं बॉर्डर का वो वाला गाना जो शायद कभी भी पुराना नहीं होगा, हमेशा नवीन ही रहेगा। सुनते रहें, साथ रहें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

साथ। 8:32 और 33 सेकंड फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय आप सुन रहे हैं छाया लोक पर हम साथ साथ। आज है बुधवार की शाम और मैं और आप साथ साथ तो हैं ही साथ ही। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी खूबसूरत कोलैबोरेशंस की जिनकी वजह से हमारा जो संगीत है सिनेमा वाला हिंदी फिल्मों का जो संगीत है उसमें 4 चांद लगे। पहले घंटे में जतिन ललित और कुमार शानू के गीत मैंने आपको सुनवाए और इस दूसरे घंटे में हम बात कर रहे हैं अनु मलिक और जावेद अख्तर की। ड्यूप्लिकेट फिल्म का ये गीत हमने सुना और इतना रूमानी गाना, मतलब जितने भी रोमांटिक वाले गाने होते हैं ना उनमें अगर मेरे पसंदीदा गीतों की आप बात करें तो ये कथई आंखों वाली एक लड़की, ये मुझे इतना पसंद है। एक अलग ट्रीटमेंट है गाने की, अनु मलिक का जो संगीत है एक उनकी छाप होती है हर एक गीत में, तो वो तो एक अलग पार्ट है। लेकिन जावेद अख्तर ने जिस तरह से गाने को लिखा है, जो ट्रीटमेंट है इस गाने की, जिस तरह के बोल हैं, आपको लगेगा कि शायद ये आपकी ही बात है। होगी कोई आपकी भी ऐसी ही सखी कथई आंखों वाली और उसके लिए आप अगर चाहें उसको मनाना अगर रूठ गई है तो अनायास आप ये गाना जो है अगर अच्छा गाते तो गाकर सुना दीजिए या फिर कहीं पर आप सुनवा दीजिए, बस आपकी जो बात है वो बन जाएगी। तो ड्यूप्लिकेट के सारे गाने बहुत ही कमाल के थे और अभी मुझे ये जैसे कि अब तक कार्यक्रम में इस दूसरे घंटे में अलग अलग किस्म के गीत हमने सुने। पहला गाना उमराव जान से और उसके बाद हमने सुना बॉर्डर फिल्म से, फिर अभी ड्यूप्लिकेट से। अब जो गीत मैं आपको सुनवाऊंगी ये है फिल्म विरासत से। 1997 में रिलीज हुई थी ये फिल्म और फिल्म में अनु मलिक जावेद अख्तर का जो कॉम्बो है बहुत अलग अलग किस्म के गाने उन्होंने इस फिल्म के लिए रचे। 7 गाने थे कुल। प्रियदर्शन की फिल्म आपको अगर याद हो और गाने जसपिंदर नरूला, कुमार शानू, उदित नारायण, हरिहरन, के एस चित्रा, अभिजीत, अनुराधा श्रीराम, विनोद राठौड़ और कविता कृष्णमूर्ति जैसी इतनी अलग अलग अलग किस्म की आवाजों ने इस फिल्म के लिए गाए। साउंड ट्रैक में इतने सारे प्लेबैक सिंगर्स थे, इनमें से एक गाना चुनना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर भी एक बड़ा ही अनयूजुअल सा ये कॉम्बिनेशन जसविंदर नरूला और कुमार शानू आप सबके लिए। सुनते रहें, साथ रहें, हम साथ साथ सुन रहे हैं आप।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक हम साथ साथ।
2: हम साथ साथ के दूसरे घंटे में हम बातें कर रहे हैं अनु मलिक और जावेद अख्तर की। और मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जिस तरह उन्होंने खूबसूरती से गाने बनाए, एक दूसरे के साथ बार बार अलग अलग फिल्मों के लिए कोलैब किया, साथ साथ उन्होंने झगड़ा भी किया। और होता है ऐसा कई सक्सेसफुल रिश्तों में से साथ रहने वाले जो मियाँ बीवी होते हैं वो भी तो आपस में झगड़ते हैं, लेकिन झगड़ते हैं इसलिए उनका जो रिश्ता होता है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाता है, जो बॉन्ड है वो मजबूत होते जाता है। उसी तरह जावेद अख्तर और अनु मलिक की जो जोड़ी, इन्होंने बहुत झगड़े किए। हर फिल्म का म्यूज़िक तकरीबन जब बना तब मनमुटाव हुआ, फिर दोनों साथ में आए। और ऐसा ही हुआ था इश्क फिल्म की म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के दौरान। हुआ ये था कि गाना उन्होंने लिखा और अनु मलिक जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे गाने की, तो जावेद अख्तर उस समय मौजूद नहीं थे। होता है ऐसा, कभी कभी हो सकता है। यूं तो जब भी किसी गाने की रिकॉर्डिंग होती है तो लिरिसिस्ट, जो गीतकार हैं, वो संगीतकार के साथ ही स्टूडियो में मौजूद होते हैं, लेकिन नहीं थे जावेद अख्तर। और बाद में उनको पता चला कि गाने की जो लिरिक्स है वो बीच में से कुछ बदल दी गई है। फिर क्या था, आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि भाई इतने बड़े बड़े अदाकारों ने मेरे डायलॉग्स को कभी नहीं बदला, तो आपने फिर ये कैसे कर दिया, मेरे लिखे हुए शब्दों को आपने क्यों बदला। अनु मलिक ने कहा कि डिमांड थी गाने की, सिचुएशन की, तो इसलिए मुझे लगा कि ये सही होगा, इसलिए मैंने वो बदल दिया। इंद्र कुमार की फिल्म इश्क, इसलिए सारे के सारे जो गाने हैं इस फिल्म के, इसलिए ही सारे गानों पर जो गीत हैं वो जावेद अख्तर के नहीं है, क्योंकि बीच में ही गुस्सा होकर, नाराज़ होकर जावेद अख्तर ने फिर क्या किया कि जो गाने लिखे थे बस उतने ही आगे और गीत इस फिल्म के लिए नहीं लिखे। और पता है आपको कौन से गाने की लिरिक्स जो है वो थोड़ी सी उलट फेर हो गई थी। वो गाना था हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है,

0: अनु मलिक की आवाज़ थी इस गाने में, और जावेद अख्तर तो नाराज़ हो गए, इसलिए बस दो ही गाने सुन के जो उनके द्वारा रचे गए थे जिनके शब्द, और उनमें से एक गीत मैं आपको अभी सुनवाऊंगी विभा शर्मा और उदित नारायण की आवाज़ में, इश्क हुआ कैसे हुआ, बड़ा ही फ्रेश सा गाना है, फ्रेश सी फील है, फिल्माया गया था आमिर खान और जूही चावला पर, चलिए सुनते हैं गाना।
1: ए, कह दो ना
2: क्या
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
2: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
2: I love you.
3: Yeah!

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

साथ साथ। और देखते देखते ही जो कार्यक्रम है अब अपनी समाप्ति की कगार पर पहुंच गया है। आप सुन रहे थे छह लोग हम साथ साथ चयनिका के साथ, और फिलहाल घड़ी में समय 8:53:50 और इस दूसरे घंटे में हम बातें कर रहे थे जावेद अख्तर और अनु मलिक की। उन्होंने साथ मिलकर जितना भी संगीत रचा खूबसूरत वाला, वो आज के इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया। उनके गीत, उनके द्वारा रचे गए, उनके द्वारा कंपोज्ड गाने आज के इस कार्यक्रम की शान बने दूसरे घंटे में। और चलते चलते अब आप सबके लिए जो गाना मैं लेकर आई हूँ वो है फिल्म मैं हूं ना से, और साल 2005 की ये फिल्म थी। और इस फिल्म के संगीत के लिए अनु मलिक ने जीता अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड। पहला जीता था 1994 की फिल्म बाजीगर के लिए, और बीच में एक अवार्ड उनको मिला था 2001 की फिल्म रेफ्यूजी के लिए। स्पेशल अवार्ड था वो फॉर क्रिटिकली अक्लीम्ड कॉम्पोजिशंस। और तो दूसरे अवार्ड की अगर हम बात करें, देखिए तीन अवार्ड, तीनों में से दो जो अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड अनु ने जीते वो जावेद अख्तर की जो उनके साथ जो गठबंधन या हम कहें जो उनकी जो जुगलबंदी थी उसकी वजह से, क्योंकि गीत के जो बोल हैं उसको भी उतनी ही तवज्जो मिलनी चाहिए जितना कि हम सुरों को देते हैं। और इसी बात पर चलिए सुनते हैं अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज में आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गाना तुम्हें जो मैंने देखा, ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। आप लोग बने रहें, कहीं ना जाए, मैं फिर किसी दिन जरूर आऊंगी आपसे मिलने। बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं आपका इंतजार, सो स्टे ट्यून्ड ऑन एफएम रेनबो कोलकाता।

0: इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है।
1: अंतिम सिनेमा सेंट्रल थे के एगन